0: तब वो सी आँखों से मैं तो आ गई हूँ फंगे ले लियो।
1: Maro tenja pies nei o kana fran chu sente ni gom kiri e prokso toka